पीत प्रम की भेट गुर सूड़ा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लिखाए सबन दीन दयाला आद मद अन प्रसोई।

दर्शन कौ बलेगारी, गुरसो प्रसन्न मिलना विछुन्न, तन देंदी सात स्नेहा, कौ नानक संत अनंत ठाकुर के, हर सिंह की जय नेहा, मन ऐसा नेहो करेहो, चकवी सूर स्नेहो,

अत मिलियो मित्र चिराणे, गुरथिया साखी तां डिठम आखी, फिर जे अवर ना दिसे को नानक शांत दयाल मोहन के, मन हर चरण गहीजे ऐसी मन प्रीत कीजे। आसा महला पंजवां सलोक, बन में फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे, नानक पेटे साध जाप हर पाया मन माहे, शंत जाको खोजे असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोड आराध्य ज्ञानी जाप जपे, जब ताल संजम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना, कर गमन बसदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बनते न पशु पंखी सगल तुझे आराधते, दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते, कोट विष्ण अवतार शंकर जटा धार, क्या है तुझे दयार मन त रुच अपार, अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूर्क प्रथनी, सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे यख किन्नर गुणपणी, कोड इंदर अनेक देवा जप्त स्वामी जय जयकार, अराध नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार, कोड देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनक पात, गोवत प्रगट जा को आराध्य पौन पानी दिन सरात, नखेत्र ससियर सूर त्यावे बद गगना गावे, सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे, सिमरत पुराण चतर बेत खर शास्त्र जा को जपात, पद पावन भगत वचल नानक मिलिगे संग सात, जेती प्रभु जनाई रसना तेत पनी, अन जानत जो सेवे तेती न जाए गनी, अवगत अगंत अथा ठाकुर सगल मंजे बहारा, सर्व जाज एक दाता न दूर संगी जारा, बस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी, यो दान मान नानक पाए शीस साधे तर चरणी। आसा महला पंजवां सलोक, उदम करो वडभागी हो सिमरो हर हर आए, नानक जे सिमरत सब सुख होवे, दुख दर्द प्रम जाए शंत, नाम जपत गोविंद न अलसाइए, पेड़ साधु संग जमपुर न जाइए, दुख दर्द न पौ व्यापे, नाम सिमरत ससुखी, सास सास आराध हर हर, त्याए सो प्राव मान मुखी।

मय प्रभ करमय सुमरत अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनु एहो पर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो।

बिनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावे किसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी सरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लगत रहे ते संग मीठे भोग सोना परमत पार अगन ते आयो बो परदे से तायो आपोड तारी प्रमुरारी सर्व सुखर नायो रखन हारे प्रप्यारे मुझ ते कछु न होआ हो ना सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरे पौन नाम तारीख उधारे भगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधान ना पावे हर रंग रते प्रभिधाते राम के गुण गावे बसद कागज बनराज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत ना जाए पाया गई नानक चरण शरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरप पए प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुमीत सुरजन इष्ट बंद पजाणिया गए कंठ लाया गुरमिलाया जस बेमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रब एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पए राम नाम और हार बेके दिवस गए गत परम मोह विकार बिनसे जोन आमन सब रहे अग्न सागर पए शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोध साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूर्ण सा संग पाई परम गते जय देखो ते संग एको रब रहे घड़कड़ वासी आप विरले किने लया जलसल मैयल पूर पूरन कीड़खत सुमान्या आद अंते मसोई गुर प्रसाद दी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण जन कहया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नान कराव रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप टरे दुख पुग दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया मिल सा संगे नाम रंगे मल होड़ी द पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल समूह सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमाणी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभु बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक।

प्रभ संग सोहंति संगे सोहंति कंत सोआमी दिन सरैणी राविए सास सास चितार जीवा प्रभ पेख हर गुण गाविए बिरहा ले जाया दर्श पाया अम्यो दृष्ट सिंचंती बिनवंत नानक मेरी इश पुन्नी मिले जिस खो जंती नस वन्यो किल विखो करता कर आया दूते दयन पया गोविंद प्रगटाया प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया अचरज डीठा अम्यो बूठा गुर प्रसादी जानिया मन सांत आई वजी वधाई नै अंत जाई पाया बिनवंत नानक सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया नरक न दीठड़िया सिमरत नारायण जय जय तर्म करे दूध पए पलायन तर्म तीरज सहज सुहिए साध संगत हर भजे कर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे गए कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अगायन बिनवंत नानक सिमर सुवा निध सिद्ध चरण गहे ता केहा काड़ा सब किश वस जिसे

विपरीत है। अवध अकार्थ जात गैबर बन कोर हे, ग्रे मूस्त मन चोर हे, दिन करो अनदिन खात, दिन खात जात बिहाद प्रबिन, मिलो प्रभ करना पते, जन्म मरण अनेक बीते, प्रे संग बिन कछ नहीं गते, कुल रूप तूब ज्ञान हीनी, तुझ बिना मुहि कमन मात, कर जोड़ नानक सरण आयो, प्रे नाथ नरहर करो गात, मीना जलहीन हे, ओ बिशरत मन तन खीन हे, तत जीवन प्रे बिन होत, सानमुख साहेबान हे, मृग अर्पे मन तन प्राण हे।

आप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया, हर कंठ लागे दिस भागे, मिलनहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए खान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सा।

पूर सगलया पौलिखया सिरलेख नानक निरभउ निरंकार सच एक महला पहला नानक निरभउ निरंकार और केते राम रवाल केतियां कन कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गेड़ मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आलप ताल लखटकियां के मुंदड़े लखटकियां के हार जित तन पाई है नानका से तन होवे शार ज्ञान ना गले टूडिये कतना करड़ा सार कर्म मिले ता पाई है होर हिकमत हुगम खुवार पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जियो बहुते जन्म भरमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुने हो लोक सुबाया सतगुर मिले सज पाया जिनी विच्चों आप गवाया जिन सच्चो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बै संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहूणी खाए गया जम काल महला पहला वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड उडरावा झट पाए वेखे लोक हसै कर जाए

संग्राम रण में छुट्टे प्राण, ला सुरती ला ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखिया आवन जान, नानक मती मिथिया कर्म सच्चा नीसान, पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे मिले सच ता तिनी सच कमाया, सदगुर मिले सच पाया जिन कै हिरदय सच वसाया, मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया, श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास, नानक लेख एक गल होर हो में चखना चाख, महला पहला लिख लिख पढ़िया ते

अंधी रित ज्ञान विहूणी भाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सीगार, उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत।

पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पद परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सो वजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, क्योंकि ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित अंदर सबको वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड़ मेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा, नदर उपठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगना पिख ना पाएंदा। श्लोक महला पहला, जे मुहा का कर्म होए पितरी दे, अगे वत सन्याणी है पितरी चोर करे, वड्डे हथ दलाल के मुस्पी एक करे, नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे। महला पहला, जो जोरू सिर नावणी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख बस नित नित होए खुआर, सूचे ए ना आखी है बैन जे पिंडा तोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसे आसोए, पौड़ी तुरे पुराने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया

पौड़ी, आपे ही करना कियो कल आपे ही ते तारिये, देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है, आपन हथी अपना आपे ही काशवारी है। श्लोक महला दूजा, एक ने ही आस की दूजे लगे जाए, नानक आस कंडी है।

गोर चरण लाघम बिनवता ऊषित कह जियो पाया, कामन काज जग उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया, देव करो दया मोहे मार्ग लाभो जित

बंध नहीं फार आरमन सुन ना लूके आपा पल निर्वाण ना चीनिया इन वेद अप हो ना चूके कई न उबजे उबजी जाने भाव अभाव विहूणा उदे अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली गए उदग कुंभ विकराना कौ कबीर ऐसा गुण परंपग तौ मन सुन समाना आस साडे तय तय धोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हथ निवग ओए हर के संतना आखिए बानारस के ठग ऐसे संत

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोए तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संत, ऐसा गर कहताई, इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फेरे चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे।

साखी शब्द सुरत नहीं उबजे, खेंच तेज सब लीना, श्रवणन विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बाता, थाके पंच दूत सब तस्कर,

राम राम राम रमे रम रही है, साग स्यों फूल नहीं कहिए रघाओ। कौआ कांक पूर चिराए, कह बिशियर को दूध पियाए। सत संगत मिल बबेक बुद होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत स्वा

की आस करे जम निहारे ससा बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा तन रैनी मन पुनरभ कर।

आस बड पाग हमारा तुर नर मुनजन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर।

गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गमदिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी

आई, बड़ी का सुहाग टरेओ, लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरेओ, आशा मेरी बौरिया को तनिया नाओ, ले राख्यो राम जनिया नाओ, एन मुडियन मेरा कर तुंदरावा, बिटवे राम रमो।

आना पूजो राम एक ही देवा साचा नामन गुर की सेवा राव जल के मजन जेगत होवे

संत की संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजे, दीजे देवा देव रखाओ, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगनी, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लखावो असंत पापी सन, रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही, आसा तुम चंदन हम इरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊज पए है, गंध सुगंध निवासा, माधव सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम्हे उपकारी रहाओ, तुम मखतूल सुपेद सुपील, हम परे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे।

निमत नाम दे दूध पी आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया। ज्ञान रविदास राम रंग राता क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्र कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौरे ओ फिरत है रहाओ। जब कछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोमन लगत है। मान बद क्रम रस कसे लोभाना बिनस गया जाए कहूं समाना। कहे रविदास बाजी जग पाई बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रामत फिरत बो जन्म बेलाने। तन मन तन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ राता मन बिसरे प्रब हीरे। अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे चार विचार न जानिया गुणते प्रीत बड़ी अनपांती। जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं रिदे निवासी। जलत जाल जम फंद परे बिग पर संच परे मन ऐसे। परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया। ध्यान मान मन एक मये प्रेम भगत मानी सुख जानिया। तृप्त अगाने मुक्त पये जोत समाए समानी जाके असली प्र पहचानिया। तन्ने तन पाया तरणी तार मिल जन संत सुमानिया। महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग।

धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर स्यों चित लावे अमृत बचन सगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पाहीन मुए मर जावे आंद मूल

अंतर मैल ना उतरे हो मैं बिन गुरबाजी गारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा थारी पोड़ मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी अरहाओ सात वेद सिमर सब शुद्ध सब एका बात पुकारी बिन गुर मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी अड़सर मज्जन कर इस नाना परम आए तर सारी अनक सोज करे दिन राती बिन सतगुर अंधियारी धावत धावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी दुरमत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महल।

मन तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवास त्यागे जंपर ऊठ सिदास हुए अनन महर की दृढ़ता आपस को जानात जो अनिंद निंद कर छोड़ो।

सगल सिट को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारो। जाने कमन पता शिव ब्रंज अर सगल मोन जान गहे ना सकाहे गता। प्रभ की आगम

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे ती रंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कबहू जाई हराओ तर्क करत अनक बो पाती।

आओ साध संग उधार एहो मन आढ़ पैर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रादया तारी बक्स।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमन शरमन अपार महिमा फिर न होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरन काल

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लेव लागी। कबल प्रगास पए सासंगे दुर्मत बुद्ध ते आगी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरह संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण परयो नानुता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

जैसी पूख होए अभ्यंतर तू समरथ सच देवनहार। ऐ जी जब तब संजम सच आधार, हर घर नाम दे सुख पाई है तेरी।

परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर न दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो, आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझकी स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो, हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो, किछ रहे न दिसै,

नीच ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नामृते केवल बैरागी सोग बिजोग विसर्जित रोग भाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सदगुर वाक हिरदे हर निर्मल ना जम कानन जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवे प्रसंग जो तु पावे सहज हरी बिन हर नाम बिरथा जग जीवन हर बर नेफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नहीं कर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रावस्त न मिट नित नित चढ़े सवाई ऐ जी गुर की दात न मिट कोई मेरे ठाकुर आप देवाई निंदक नर काले।

दुर्मत व्यापे जिन अंतर्म हो गुबारी। संत जिना की कथा ना पावे ओए डूबे सान परवारी। निंदक निंदा करमल तोवे ओ माल पगमाया तारी। संत जिना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी। ओ प्रपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी। हर एको सूत

क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत

कपड़े लालच लगया ना उरवार ना पार नानक गुरमुख उभरे जे आप मेले करतार पौड़ी भगत सचे दरसों दे सचे शब्द रहाए हर की प्रीतिन उपजी हर प्रेम कसाए हर रंग रहे सदा रंग रते रसन हरस प्याए सबल जन्म जिनी गुरमुख जाता हर जी हृदय वसाए बाज गुरु फेले बिल लांदी दूजे पाए खुआए श्लोक महला तीजा कल युग मैं नाम निधान भगती खटिया हर उत्तम पद पाया सतगुर सेव हर नाम मन वसाया अनद नाम त्याया विचे ग्रह गुर बचन उदासी होमे मोह जलाया आप तरिया कुल जगत तराया तन जनेंदी माया ऐसा सतगुर सोई पाए जिस तुर मस्तक हर लिख पाया जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो जिन प्रम पुला मार्ग पाया महला तीजा त्रैगुण माया वेख भुले जो देख दीपक पतंग पचाया पंडित फुल फुल माया वेखे दिखा किने क्यों आन चढ़ाया दूजे पाए पड़े नित बिखया नावो दिये खुआया जोगी जंगम सुनयासी फुले ओना अहंकार बो गर्भ वधाया शादन भोजन ना ले ही सद पिखया मान हठ जन्म गवाया एतड़िया विचो सो जन समदा जिन गुरमुख नाम ते आया जन नानक किसनु आग सुनाई है जा कर दे सब कराया पौड़ी माया मोह प्रेत है।

कायागढ़ पीतर कूड़ कसत अभवानी परम पूले नदर ना आवनी मानमुख अंध अज्ञानी उपाय किते ना लभनी कर पेख सके पेखवानी गुर शब्दी खोलाइयन हर नाम जपानी हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया से तृप्तानी श्लोक महला तीजा वाहो वाहो करते हैं रैन सुख विहाए वाह वाह करते हैं सदा आनंद होवे मेरी माए वाह वाह करते हैं

छोड़ सियानप सगल मंतन अर्पतार पूजो गुर के पैर दुरमत जाए जर साध जना के संग भवजल बिखम तर सेवो सदगुर देव अगे ना मरो डर खिनमय करे निहाल ऊने सुबर पर मन को होए संतोख तिहाइये सदा हर तो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तोर श्लोक महला पंजवा लगड़ी सो थान जोड़ नहारे जोड़िया नानक लहरी लख सयान डुबन दे ना मा पिरी महला पंजवा बन पी हावले एक साथी लदम दुख हरता हरनामा बल बर जाई संत प्यारे नानक पूर्ण कामा पौड़ी पाईन सब निधान तेरे रंग रतिया ना होवी पछोताओ तुद नो जपतिया पहुंच न सके कोय तेरी टेक जान गुरपूरे वाहो वाहो सुखला चितार मन गुर पे सिवत भंडार करमी पाईए सदगुर नदर निहाल बौड़ना ताईए रखे आप दया।

पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन भरमगढ़ तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन घर स्यो जोड़िया नाम निदान अखुट गुरदे दारुओ महारोग बिकराल तिने बिदारुओ पाया नाम निधान बहुत खजानिया जिता जन्म अपार आप पछानिया महिमा कई न जाए गुर समर्थ देव गुर पार ब्रह्म परमेसर अपरंपर अलख पेव सलोक महला पंजवा उदम करेंदिया जियो तू कमाव दिया सुख पुंच ध्याय दिया तू प्रभु मेल नानक उतरी चिंत महला पंजवा शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी तेरा कीता होए ता काहे डरपिए जिस मिल जपिए नाओ हे जियो अर्पिए आए चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनु पोहे कवण जिस वल निरंकार सब किस के वस न कोई बहारा सो भगता मन उठ सच समहारा तेरे दा ध्यान तो तू रखण वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया सलोक महला पंजवा काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार राख लियो प्रभ अपने नानक सब बलिहार महला पंजवा खांदिया खांदिया मोह कठा पए नंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच

टूटे माया के बंधन फागे, हर राम नाम लेव लागे। हमरा मान मोहयो गुर मोहन, हा विष्णु पई मुख लागे, सगली रहन सोई अंधियारी, गुर किंचित कृपा जागे। जन नान के प्र सुंदर स्वामी, मोहे तुमसर अवर ना लागे, देव गंधारी मेरो सुंदर, कहो मिले कित गली। हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली रहाओ, रेके बज सुखाने हीरे, ए चाल बनी है पली। लटरी मदरी ठाकुर पाई, ओ सुंदर हर टोल मिली, एको प्रयो सखियां सा प्रे की।

पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर किसमय रहा समाए राम, सर्वे सुमाना आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटिया अंधेरा दुख नाठा अम्यो हर हस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। ग्रे लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइये। नानक पैम पै संत सरणी

जिन हर घर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे, अन दिन नाम खाना राम। अमृत बाणी उच्चना हर जस,

गुण संपूर्ण प्रम पीत हर हर मिल फगै बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे

चात्रक हर बूंद मांगे, जब जीवा हर घर चरना, अमेश रोबरो पियो, हर घर ना माराम, संत संग मिले।

कोड़ अपराध परे पी तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेई रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पिखत संग सब कै

बंधन तोड़े सच वस, अज्ञान अंधेरा जाए, सब किस देख तिसे का जिन किया तन साज, नानक सरण करतार की करता राखे लाज, पौड़ी जदों आपे थाड़ किया बै करते, तदों पुछना सेवक बिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर न दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया आपे सेव बनाइयन गुरमुख, आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है, आपे आपे करे सोथिया। श्लोक महला तीजा, गुरमुख

साहेब सदा हजूर है, परमे के चौड़ कट के अंतर ज्योत त्रेह, हर का नाम अमृत है, दारू एहो लाए हो, सागुर का पाना चित रखो, संजम सच्चा ने हो, नानक ऐसे सुखे अंदर रखसी, अगे हर्षों केल करे हो पौड़ी, आपे पार अठारे बनस्पत

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुले आ जाए। कीमत कने न पाईया, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमयोग है।

ए मन यो तन नाम है जित सदा सदा सुख होए टोटा मूल न आवई लाहा सदगी होए खाद है खर्चे टोट न आवई सदा सदा ओ दे सहसा मूल न होवई हांत कदे न होए नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी आपे सब कट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जहर जो शक्ति गोबार कर वर्त्या सुनहर उथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हार नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूगी बाहर अपनी मित आप जान।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहां तरनहार। पौड़ी सब क्यों तेरे वस है, तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आवंदा, सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो योगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ए योगी की नगरी सब को वस, पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए। पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सुखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे

आए, निर्मल नाम से मन आए, पर में भूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुवार, नानक से बड़ पागी जिन घर नाम के आया, गुर प्रसादी मन नमसाया, वढ़हंस महला तीजा, होमे नावे नार विरोध है, दोना वसे एक ठाए, होमे जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ, होमे सब शरीर है, होमे उपत होए, होमे वड़ा गुबार है, होमे विच बुझ न सके कोए, होमे विच भगत न हो वही हुक्म ना बुझिया जाए, होमे विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वढ़हंस महला चौथा कार पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिर हर नाम ते आवा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वड़हंस महला।

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रा मेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख पीसर तब की साध।

आओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दिट सुजानी सचगुम तुम्हारा तृत निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहेब परपुर लीना वढ़ंस मुहला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाणे सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा।

पंजवा सार संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ऐ रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ांस महला पंजवा।

तुम्हारी वढ़ांस महला पंजवा तार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे अंतरलोचा मिलन की प्यारे हों क्यों पाई गुरपूरे जे सो खेल खिलाई गए बालक रह न सके बिन खीरे मेरे अंतर भुख न उतरे अमाली जे सो पूजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई मैं मिल्यो मित्र सुखदाता ओ जी की मेरी सा बेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हाँ एक खेन तिस बिन रह ना सक

कंत को अमाली सो फिर कद नहीं देखा सरस फूकन मिसरे बिन फिर किते ना लेखा यो कापड़ ताना सुखा वही कर ना सको हो वैसा जिन्नी सखी लारा व्या प्यारा तिन आगे हम आदेसा मैं सब सीगार बनाया अमाली बिन फिर काम न आए जा से बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए होवारे तिन सुहागनी अमाली तिन के तुवांस पाए जिचर दूजा परमसा अमाली तिचर मैं जानिया प्रदूरे जा मिलिया पूरा सतगुरु अमाली ता आसा मनसा सा पूरे मैं सर्व सुखा सुख पाया अमाली तेर सर्ब रहा पर पूरे जन नानक हरंग माणिया अमाली गुर सदगुर कै लग पैरे वढ़हंस महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सच्ची बाणी सच धुन

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय पुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री की।

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाय सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सोहा गो मस्तक पागो सच्चे।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाय, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडपा गो राम। गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सद बैरागो ताचरते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम। गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया सुमाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वसे ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंतर तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान विगुणे दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए के एक सच लगे वापारा, सदगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन कुमाया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द समाने सच रते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवन अपना से जन्म वडभागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लगलागी अपना आप पछाणिया, मत निचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया। एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी, मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे, वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सदगुर दिया बुझाई राम। ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए। ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजी है जा सदगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा राम, कूड़ बोल बिकामणी बहु वदे विकारा राम। बहु वदे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे न चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है।

करो सुख दाते देव सतगुर चरण गम तूरा, कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम, हर दानो हर दान देवे हर पुरख निरंजन सोई राम। हर घर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा, सेवक पाए मिले वड़ पागी जिन गुर चरणी मन लागा। कहो नानक हर आप मिलाए मिल सदगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। वढ़ांस महला चौथा, हाँ गुरबिन खरी निमाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल सुमाणी राम, सदगुर मेल घर नाम सुमाणी जप हर घर नाम तिहाया। जिस कारण हौ ढूंढ ढूंढेंदी सो सज्जन हर कर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी। हौ गुरबिन खरी निमाणी, जिन्ना सदगुर जिन सदगुर पाया,

मरण मुनसा सूर्य हक है जे होए मरे परवाणु नानक किसनु बाबा रोईए बाजी गए ओ संसारो कीता वेखे साहिब अपना कुदरत करे बिचारो कुदरत बिचारे धारण धारे जिनकी या सो जाने आपे वेखे आपे बूझे आपे हुकम पछाणे जिन कछ किया सोई जाने ताका रूप अपारो नानक किसनु बाबा रोईए बाजी गए ओ संसारो वढांस महला पहला दक्षणी सच सरंदा सच्चा जानिए सचड़ा पर्वतगारो जिन आपी ने आप साजिया सचड़ा अलाख्या पारो दोए पुल जोड़ विछोड़ियन गुरबिन कोर अंधारो सूरज चंद सिरजियन अहे निस चलत विचारो सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा दे प्यारो अरहाओ तो सिरजी मेदनी दो सुख देवन हारो नारी पुरख सिरजे बिख माया मोह प्यारो खानी बाणी तेरिया देजिया आधारो कुदरत तखत रचाया सच नबेड़ नगारो आवा गमन थिरजिया तू थिर करने हारो जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो भूडड़े नाम सारिया बूडड़े क्या तुचारो गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो सदड़े आए तिना जानिया हुक्म सच्चे करतारो नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो रूप ना जाने सोनिए हुकबदी सिरकारो बालक बिरत ना जाननी तोड़न खेत प्यारो नाउदर ठाके हुक्म सच्चे।

अंतर सहज समाधि तिर रहया पर पूरे वेख हदूरे रंग माने सहज सुपाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया हों तिन पूछो संता जाए।

तते वढ़ंस सच नाम उर तार सच संग्रह सच सच रह सचे नाम प्यार सदा निर्मल मैल ना लगई नदर की पी करतार नानक हों तिन कै बलिहारण है।

पौड़ी। तिस गुर कौ हों मारिया जिन हर की हर कथा सुनाई। तिस गुर कौ सद बलिहारणे जिन हर सेवा बणत बनाई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू लै छड़ाई।

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम निवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया सब दन लागो पाओ ओसनु सुख ना।

ब्राह्मण घारा जो मनुआ सदा सुख वस सहज करे व्यापारा अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करा मनहारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श प्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए जो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जे हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस हर नाम सुने मन अंध पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिल गुरसिख कौ हाउ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया श्लोक महला तीजा मन हड़के ने न पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद्ध सिद्ध सा मोह नाम नवस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए।

नित नित हुए खुवार, नानक किरद पय कमावना कोई न मेटन हार। पौड़ी तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम को सांते आई। तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम हर भगत पाई। तन तन हर भगत सतगुरु हमारा, जिकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई। तन तन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा, जिन वैरी मित्र हम को साध समधिट दिखाई। तन तन सतगुरु मित्र हमारा, जिन हर नाम से हमारी प्रीत बनाई। श्लोक महला पहला। कर ही मुंद वदेश पेर ने चूरे संभाले, मिलदियां टेल ना।

प्रभाते हरसना जाप मन रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द पेड फुन साचे ऐनस नाम रते से सूचे मर जन में से काचे अवर ना दिसे किस सालाही किसे सरीक न कोई प्रणत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर ना से काल न करमा जात जात अजोनी संपो नाथ पाओ न परमा साचे सचियार मिटो कुर्बान नाथ रूप वर्ण नहीं रेखिया साचे शब्द निशान रखाओ नाथ माद पिता सुद बंधव नाथ कामना नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई वज्र कपाट मुगते गुरुमति निरभय ताड़ी लाई जन तो पाए काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे टूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचा चारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है त्यू सागत मरे प्यास त्यू हर बिन मरिगे रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर मिले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए हर सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो योगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाई है हर पाई गे सदगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड त्याग हो सद गुरबचनी फल पाही जियो। जो पावे त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही।

मन रे समझ तम मत लागा, नाम सार अनस लोप हन, फिर पछताए अभागा रखाओ। आपत को हरख जाद को रोवे, ए दो सुख ना लेन लागा, आपे दो सुख भोग पुगावे, गुरमुख सो अनरागा। हरस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इव रस खोया,

मन मेरे गुर बचनी निद पाई, ताते सच मैं रहा समाई रहाओ। गुरसाखी अंतर जागी, ता चंचल मत त्यागी। गुरसाखी का उजियारा, ता मिटिया सगल अंधियारा।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता

तब तप आपे सदगुर आप गए चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाउज पाएदा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप गए प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलांदा प्यारा जन नानक हर स्थापे सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तुल तुलाया आपे सौ आपे बणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया हर घर नाम निदान है।

आदि। एक पिता एक के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन दियो दिखाई, सुन मीता तूरी कौ बल जाई, यो मन तेरा पाई रहाओ, पा मलोवा मल मल तोवा, यो मन तय को दिशा, सुन मीता हूं तेरी शरणाई आया, प्रा मिलो।

भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कहो गुर कृपा थारी साब अकुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवा कोल ब्रह्मण को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रदपाले निसार समाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे।

सेजन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस दिन अमस्या तीनर त्रिसंतर खाई हर आराध्य अरोग अनदाई जिसनु मिसरे मेरा राम स्नेही जिस लाख बेदन जन आई रघाओ जे जन ओढ़ गही प्रातेरी से सुगे प्रसरणे जे नर बिसरिया पुरख बेधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाई ते मां आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुरते बेमुखाई ते नरक।

तुम सबसा जे सा जनेवा जे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुनियारे गुण नहीं कोई तुम दान दे मेहरबाना तुम करो भला हम पलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम ए हवाला राग संतन कै पाछ सोरठ महला पंजवा कर दूजा माद गर्भ में आपन सिमरन दे तय तुम रखन हारे पावग साग अथा लहर मैं

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवां हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखे आप पाई।

जो करे सोई सोई जाने रहे न कछुए छानी रखाओ। हे बा स्वात लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़ दे मह पर दारा संग फक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा ठाक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई गुरपूरे की बाणी। जपंद करो नित प्राणी हर साचा सिमर हो पाई, साध संग सदा सो पाई है हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल छीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा, गुण गाव अजुत अविनाशी आनंद हर अंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए,

बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी तारी, संतो या बतावो कारी, जित हो में गर्भ निवारी रखाओ, सर्व भूत पार ब्रह्म करमान्या, होवा सगल रे नारी, देखो प्रभु अपने संगे, चूके पीत परमारी, औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु द्वारी, कहो नानक जिस मस्तक लिखया, तिस गुर मिले रोग बिदारी।

ए पीतर ते इनको डारो, अपन निकट बुलावो, अपनी विद आप जनावो, हर जन मंगल गावो रखाओ। बिसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पावो, गुरपूरा पेट उबड़ पागी, जन नानकते ना तावो। सोरठ महला पंजवां, जाके सिमरन सब कुछ पाइये, विरती काल न जाई, तिस प्रत्याग अवर कतराच्यो, जो समय रहया सुमाई। हर घर सिमरू संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ। सार संभाले नित प्रतपाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नांग प्र तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावे।

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो नै पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब ढूंढन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रघाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लब्ध अपनी पाई ता कत आवे कद जाई ते साच न्याय नबेरा ऊखा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्व थान को राजा ते अनहद शब्द अगाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम साए हो कर बैठे गुरु त्याय हो गुर पूरे सत कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर सिनाना रहाओ साची गुर वडियाई ताकि कीमत कह न जाई सिर साहा पातशाह उर पेड़ मन ओ माहा सगल पराज लाथे मिल साह संत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा फल सिट करे जयकारा नांग पा मेरे साथे जन्म मरण पै लाथे तोरठ महला पंजवा गुर पूरे कृपा तारी प्रा पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए अंध मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरीय उठत बैठत हर हर त्याईय आन दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड पागी पाए कोड जन्म के किल विखनासे हर चरणी चित लाए उस्त करो सदा प्रव्यापने जिन पूरी कल राखी जी जन स पय पवित्रा सगुर की सच साखी बिघन मिरासन सब दुख नासन सदगुर नाम दृढ़ाया खोए पाव पय सा पावन जन नान सो कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लस्कर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी पय दयाला जाप अंदर हो गुर चरणा पौ कते नहीं प्रसरणा अरहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीब उसारी बाल कन तकिया तेरा तू पार उठा गुरु मेरा जिन जिन सा संग पाया तू प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रह दिया फुजल खेम सवतिया होए प्रभु सगाई सब उठला गी पाई सास सास प्रत्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सोग सहज आनंदा प्रा मिलियो मन पाबंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगल पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बिना रघाओ हर चरण की ओर सतानी सचू की कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हा रसक रस गुण गाया प्रकाट्या जमका फासा मन पूर्ण होई आसा जय पेखा तै सोई हार प्रभन अवर न कोई कर कृपा प्रभ राखे साब जन्म जन्म दुख लाथे निर्भव नाम त्याया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठाण पाई करतारे ताव छोड़ गया परवारे गुरपूरे है राखी तरन सचे की ताकी परमेश्वर आप हुआ रखवाला सांत सहज सुखिन में उपजे

बात सुवारी, प्रभ अपना बिरध समारिया, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया, गुर का सद पयो साखी, तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गहेरा, जप नानक नाम सा साखी, अपने दास की पैज राखी, चोरठ महला पंजवा, विजकर्ता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा हुआ, मज्जन गुर अंधा रासे, जप हर हर किल खनासे।

ए जानो भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नामा, मान रे कौन कुमत लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी रखाओ, मुक्त पंथ जाने उते नाहन, धन जोरन कोताया, अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथ आप बंदाया, नहर पजो न गुरजन सेवे हो, ने उपजो कुछ ज्ञाना, घट ही माए निरंजन तेरे, तै खोज उदयाना, बहुत जन्म परम ते हारियो, हस्तर मत नहीं पाई, मान दे पाए पद हर पद, नानक बात बताई, सोरठ महला नामा, मन रे प्रभु की शरण विचारो, जे सिमरत गण कासी उदरी, ताको जस उर तारो रघाओ, अटल पयो रू जाके सिमरन, हर निरपय पद पाया, दोखरता ए विद को स्वामी, तय काहे बिसराया, जब ही शरण गही कृपा निध, गज ग्रह ते छूटा, मैं मां नाम कहां लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा, अजामल पापी जग जाने, निमखमाए निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मान, तय पी उतरे पारा।

सुआन पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की रखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ ता छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर नज पोखयो पसकी न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखियन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्यो गोविंद फिरता आओ सिरानी हो नान घर बिरध पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं मान थोक सुने वर पह नहीं जा कह संचन माटी मान है रगाव नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोचते रहे न्यारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल त्याग।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो खनली तोती उजली ना होवई। जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे, उल्टी होवे मत बदला हो नानक मैल ना लगई। ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चौ जुगी कल काली कंडी, ए उत्तम पदवी ए जुगमाहे। गुरमुख हर कीर्त फल पाईए जिन को हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी आंदन भगत हर उचर है, हर भगती माए समाहे। पौड़ी हर हर मेल सा जन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमती हर सदा मान। हर जप जप औखद खादिया, तब रोग गवाते दुखा कान। जिन्ना साध ग्रासना विसर से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उथारे दबियो, तुत्या गई विखाए। सगुर का शब्द सुनना जागियो, अंतर ना उपजियो चाओ। श्री जलो गुणवारा जो गुर कारना कमाए, जगत जलंदा डिठ मैं होमे दूजे पाए। नानक गुर शरणाई उबरे, सच मन शब्द त्याए। महला तीजा। सबदरते होमे गई तो बावंती नार, तिरके पाने सदा चले ता बनिया सीगार। सेज सुहावी सदा पिर रावे, हर वर पाया नार। ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रामेल लई गुर के हित प्यार। पौड़ी जिन्ना गुर गोप्या अपना, ते नर बुरियारी। हर जियो तिनका दर्शन ना करो, पापिष्ट हत्यारी। ओए कर कर फिर एक शुद्ध मन, ज्यो धरकट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी, हर मिल लो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजे, फिर दुख न लगे आए। जमन मरना मिट गया, काले का किस नाम बसाए। हर से ती मन रव रहा, सच्चे रहा समाए। नानक हो बलिहारी तिन कहो, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। तिन सबदे शुद्ध न हो गई, जे अनेक करे सीगार। फिर की सार न जाने, दूजे पाए प्यार। साक शुद्ध साक कुलखणी, नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर घर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। हर नाम ते आई हर उचरा, हर लाहा लैणी। जो जपदे हर घर दिन सरात, तिन्हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी। श्लोक महला चौथा। हर दर्शन स्यो प्रीत है, हर दर्शन को मित। हर दर्शन के वस है, जो जंती कह वस जंत। हर के दास हर त्याय दे, कर प्रीतम स्यो नेहो। कृपा करके सुनो प्रभ, सब जग में वरसे मेहो। जो हर दर्शन की उस्तत है, सा हर की वडियाई। हर अपनी वडियाई पाम दी, जन का जयकार कराई। सो हर जन नाम त्याय दा,

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई,

हो, ऐसो बेडी बरना साको सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस जाखेया, पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सोनरी बाई।

आनक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया, सर्वे एक अनेक है स्वामी, सब कड़ भोगवै सोई, कहे रविदास हाथ पैने रह, सहजे हुए सोई, जो हम बांधे मोहफास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने शूटन को जतन करो, हम शूटे तुम आराधे, माधवे जान हो जैसी तैसी, अब कहां करोगे ऐसी रहाओ। नीन पकर फांक्यो और काट्यो, रांद कियो बहुबानी, खंड खंड कर पूजन कीनो, तउ न बिसरो पानी, आपन बापे नाही किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा, कहे रविदास भगत एक बाडी, आभे कासो कहिए, जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजहू सही है, दुलाभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अब वेके, अराजे इंदर समसर गृह आसन, बेनहर भगत कहो के लिख, ना विचार्यो राजा राम को रस, जे रस अनस बिसर जाही रहाओ, जान अजान पै हम बावर, सोच असो दिवस जाही, इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध, परमार्थ प्रवेश नहीं, सहित आन अचरित अनकश, समझना परे अपर माया।

तुम स्यों तोर तमन स्यों जो रह रहाओ। जौ तुम दीवरा तौ हम बाती, जौ तुम तीर्थ तौ हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी।

पीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ, राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन हुए को पसम की ठेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी गारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम सरनाग तराजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा, चमरटा गांठ न जनई, लोग ठावे पन ही, अरहाओ, आर नहीं जे तोपो, नहीं रामबी ठाओ रूपो, लोग गंठ गंठ खराबे गुच्चा, हों वर गंठे जाए पहुचा, रविदास जपे राम नामा, मोहे जमसु नाही कामा, राग सोरठ बाणी भगत भीखन की, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, नैनो नीर बहे तन कीना, पए किस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उच्चरै।

साच रते अहे निस बैराग, क्यों जुग में अमृत साची बाणी, पूरे पाग हर नाम सुमाणी, सिद्ध साधक तरसे सब लोए, पूरे पाग प्राप्त होए, सबके साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए, सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए, तनासरी महला तीजा, नावे की कीमत मित कही न जाए, से जन तन जिन एक नाम लिवलाए, गुरमत साची साचा विचार, आपे बगसे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ, हम मूर्ख मूर्ख मन माहे, होमे विच सवकार कुमाहे, गुर प्रसादी होमे जाए, आपे बगसे लए मिलाए, बिखिया का धन बहुत अभमान, अहंकार डूबे ना पावे मान, आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत साला ही सच सोई, आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर न कोए, जिस

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव शेख खट बोले मुख आगर।

जिन जल सोखेत बढ़ायो कमल हेत बिन सोखे पवरा उन मार्ग निकस न पायो। अब मान एक स्यो मोकीना मरे न जावे सदगी संगे सदगुर सबदी चीना रहाओ। काम हित कुंतर लै फांकेओ ओ पार बस पयो बिचारा नाद हेत सिर डारो कुरंका उस ही हेत बिदारा। दे कुटंब लोभ मोयो प्राणी माया कौ लपटाना अतरच्यो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुखेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्री प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बैरानी छाडी अंग बुद्ध मोह मन बासन दे कर गढ़ा गाडी रगाओ। ना को मेरा दुश्मन रहया नाम किसके बैराई ब्रह्म सार पसायो पीतर ता गुर ते सोजी पाई। सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरगा ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सो ठीठा अमृत रूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल मैयल सर्ब निवासी नानक रमैया डीठा। तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिनस ओए आए मां आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। अब होए राम जसो मन गायो पयो परगास सदा सुख मन में सदगुर पूरा पायो रहाओ। गुण निधान दिल पीतर वसया ता दुख परम पौ पागा पई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोथा का होमे रोग मिटे कृपा ते जमते पय बिबाका। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कह कुरवाणी। तनासरी महला पंजवा जिस का तान मन तान सब तिसका सोई सुड़ सुजानी तिन ही सुनिया दो सुख मेरा तौ विद नीकी खटानी। जी की एक ही पैमानी आवर जदन कर रहे बहुत तेरे तेन तिल नहीं कीमत जानी रगाओ। अमृत

बहुनारी पारग्रे जो न चुक तिन प्रत करै करै पछतापै सोग लोभ मै सूकै हर हर नाम अपार अमोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तन्हा श्री मोहल्ला पंजवा लवे न लागन कौ है कछुए जा को फिर ओ तावे जा को गुर दीनो इहो अमृत तेसी कौ बने आवे जा को आयो एक रसा खान पान आ नहीं खुदया ताके चितना बसा रहाओ मौल्यो मन तन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरना साको उस्तता की कीमत कहन ना जाई काल न मिलियो सेवना।

हो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम की सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

आद अंत दयाल पूर्ण तिस बिना नहीं कोए, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए, वेद सिमरत कथय सासत भगत करे विचार, मुक्त पाइगे साध संगत बिरस जाए अंधार, चरण कमल आधार जन का राज पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक, तनाश्री महला पंजवा फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे हर हर नाम ते आया, ताते मोय तारी ओढ़ गोपाल शरण परयो पूर्ण परमेश्वर, बिनसे सगल जंजाल रहाव, सुर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल तारन हर हर नाम ते आए, नारक नाम निरंजन गाइये पाइगे सर्ब निधाना।

प्राण पद चित राख सग लखे मरना रहाओ। चंदन चोरस पोग करत अनेक है, दिखिया विकार दिख सग लखे फीके। एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तान कन अपन थाप्यो हार जप न निमुख जाप्यो। अर्थ द्रव देख काच संग ना ही चलना, या कोरे कर्म पला तिन ओढ़ गई संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना, पायो रे परम धान मिट्यो है अवमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेस लो मोह मा पोजल तारे रहाओ। सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन निधान थारे। चरण कमल नमस्कार कुन गोबिंद बिचारे, साजना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे। तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सास सास माले। हे लोक परलो संग सगाई, जद कदम होए रखवाले। गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे। पाए ना साके जाले रहाओ, निर्तन कौ तन अंदले कौ टेक। माद दूध जैसे बाले, सागर मैं भोज पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा, पय कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय संचाई। नाम निध रिद सिद्ध हर लागर ही जन पाई, संतन को आनंद सगल ही जाई। गृह बाहर ठाकुर भगतन का हराबर या सर्वठाई रखाओ। ताको कोई ना पहुंच नखारा, जाके अंग कुसवाई। जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत, नानक नाम त्याई। तनासरी महला पंजवा, दर्भवंत दर्भ देख गर्भ, पूर्णवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमारा, त्यो हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट समारे, जैसा बित तैसा होए वर्त, अपना बल नहीं हारे। रहाओ आन त्याग पै इक आसर, शरण शरण कर आए। संत अनुग्रह पै बन निर्मल, नानक हर गुण गाए। तनासरी महला पंजवा, जा को हारंग लागो इस जुग में, तो कई तगे सूरा। आत्म जिने सगल वसता के, जा का सदगुर पूरा। ठाकुर गाई गे आत्म रंग,

दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। मां आनंद मंगल रूप तुमरे भजन अनूप रसाल हृदय चरण सब सगुर को नानक बंध उपाल। तनाशरी महला पंजवा अपने उद खिलावे भोजन अपने उद खिलावे सर्व सुख हो रस देव मन की नाल समावे। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कद तद तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा संत के पाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोबन तन जीरा इन ऊपर लय बारे। मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित पन दे पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए भवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता विरस न कतहु जात। सगुर पूरे कीनी दात हर घर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात रखाओ। अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक।

तृष्ण अगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तन्हा श्री महला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम थे आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी हर का

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता पाई सुध बनता।

त्यावक बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पे निरंकारी मुक्त पदार्थ हरस चाखे आमन जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मैं हंस हंस मैं सागर अकत कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार ना पुरख कहो को कैसे तिर पवन जो तरहे लिव लाई सुर नर नाथ सचे सरनाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पे काटन हारे होमे मार मिले भगतारे आनक जन कर काल संताए मर न लखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुबधा खोवे आप न चीनस प्रम प्रम रोवे है तो पढ़तो सुन तो एक तीर्ज धर्म तरणी तर टेक जात सा संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर कै शब्द परम पौ पग तूरत मूर्त आद अनूप नानक जाचे साज स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिले या परवान नाथ स्मरण न आवन जान ठाकुर मैं दास दास मैं सोए जय देखा ते अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाइये बिन गुर फेटे मर आइये जाइ।

परम ज्ञानी साच साचे भावे आनंद अनंदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही साचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विख लादे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण तिर स्यों प्रीत प्यारी तिर कर सोहे नार।

तनाश्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अपतियार क्या कीजे पचनी तोर मोर मन मन जन को पूर्ण दीजे हौं बल बल जाओ रमैया कारण कारण कमन अबो।

जियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छत नीका अनाज मंगो सत सीका कऊ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी करकी घीघन चंगी चन तन्ना ले वै मंगी जय।

मेरे हीरे रतन नाम घर बसया, गुर हाथ धरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल बख दुख उतरे, गुर नाम दियो।

साथ था। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महल्ला चौथा, हीरा लाल अमोल कहे पारी बिन गाक मीका काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिकानून लाखा, मेरे मन गुप्त हीर हर राखा। दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। अरहाओ मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तेन का रतन लाखा ते उजड़ परमु एगा वारी। माया को अंग बिख चाखा, हर घर साग मिलो जननी के, हर साधु शरण हमारा कहा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी, हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है, तौ वड़ अगवड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी, पाखाण डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा, हम बार कछु न जाने गातमित, तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सयाना। मेरा मन आलसिया उगुलाना, हर घर आन मिलायो गुर साधु, मिल साधु कपट।

जो अमली अमल लुभाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तेन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सिरे वे खिन खिन जिन घर मीठ लगाना। हर घर कृपा तारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबाना। जैत सरी महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड़ पाया। हार रसक रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी। पुर बचनी बिसगर काटबा मेरा मन आराम ना रस लागबा। हर किए पतत पवित्र मिल सतगुर हर नामे हर चाख बार हाव। तन तन वड़ भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु ले उन मन लागबा। तिसना अगन बुझी सांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाखीन तुर पाए जिन स गुर दर्शना पाएबा। ए दूजे पाए पवे गर्भ जोनी ता बिरथा जन्म तिन जायबा। हर द्यो बिमल मत गुर सत पग सेवह हम अगर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण सत पग मांगे हर होए दयाल दिवाएबा। जैत सरी महला चौथा जिन हर हिरदे नाम ना बस्यो तिर माद की जे हर बन जा। तिन सुनी दे फिरे बिन नावे ओए खाब खा मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रोतारी गुर ज्ञान दियो मन समझा। अरहाओ हर कीर्त कालजुग पद उत्तम हर पाई गे सतगुर माजा। हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन सद मिलियो वड़पागी सब केलबक गए गवाजा। सतगुर साहु पाया वड़दाना हर किए बहुगुण सांझा। जिन को कृपा करी जग जीवन हर उरतारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जैत सरी महला चौथा सत्संगत साध पाई वड़पागी मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तारस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा। मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिले उलाए च पीड़ा। अरहाओ सागत बंद पय है माया दिख संचय लाए ज पीड़ा। हर के अर्थ खर्च न सक है जमकाल सह सिर पीड़ा। तेन हर अर्थ श्री लगाया गुर साधु बहु श्रद्धा लाए मुख तूड़ा। पलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध पुर मिल साधु पा खान हर हो मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा तार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर घर सिमरो अगम अपारा जे सिमरत दुख मिटे हमारा। हर घर सतगुर पुरख मिलाव गुर मिले सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे हर घर नाम रखो उरतारे। हर घर अमृत भजन सुनावो गुर मिले प्रकट होई राम। मसूदन घर माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर घर दया करो गुर मिलो पुरख निरंजन सोई राम। हर घर नाम सदा सुखदाता हर के रंग मेरा मन राता। हर घर महापुरख गुर मिलो गुर नानक नाम सुख होई राम। जैत सरी महला चौथा हर घर नाम जपाह पुरमुख नाम सदा लैलाहा। हर घर भगत रिड़ावो

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन कर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। कर कीर्त जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जगदीश जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम।

जाको जोगी खोज तहारे पायो नाए ते पारा। तो स्वामी तुम निट पछानो रूप रेख ते न्यारा, पाम नाम जगत में हर को कभू नाए संभारा। नानक शरण पर्यो जग बंधन राखो बिरद तुहारा। जय तसरी महला पंजवा, शांत कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद। श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अनदिन नीत, खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संगमीत। शांत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया, इस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। ते दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे, नयन हमारे प्रे रंग रंगारे। एक तिल फीना थीरी जे प्रस्यो मन लीना ज्यो जल मीना, क्यात जिवें तसंतिया जन नान गुर पूरा पाय तगली तिखा बुझंतिया। यार वे प्रे हब्बे सगिया मूह कई ना जहिया, यार वे एक डू एक चाड़े हो के चेतिया। एक डू एक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा, तिना देख मन चाओ उठंदा हो कद पाई गुणतासा। किन्नी मैंडा लाल रीझाया हो तस आगे मन ढेया, नानक कहे सुन बिनो सुहागन मूंद डिखा पिर कहिया। यार वे तेरे आपन पाणा किश नी सी छंदा, यार वे तेरा व्या लालन मूह तद संदा। लालन ते पाया आप गवाया चेतन भाग मथाने, बां पगड़ ठागर हो कि दी गुण अवगुण ना पछाणे। गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बू के सुहंदा, जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी था मैं पाई, वर लोड़ी दा आया वजी वाधाई। महामंगल रहसतिया फिर दयाल सदन वरंगिया, वड़ भाग पाया गुर मिलाया साध के सत्संगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई, बिनवंत नान सुख सुखेंदी था मैं गुर मिल पाई। जय तसरी महला पंजवा, कर दूजा।

खंडन कल कलेश प्रसिमर नानक ने दूरण हावरंग माने जिस संग तैसो लाइगे नेहो तो सो बिंदना विसरो नानक जिन सुंदर किया देहो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया तीने रस भोग गृह मंदर रथ अस दिए रज पले संयोग सुध बंता सजन सेवक दिए प्रदेवन जोग हर सिमरत मन तन हरिया ले जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिरसे सब सोग त्रोक कुटंब जतन करण माया अनेक उद्यम है हर भगत पादहीन नानक प्रा विसरत ते प्रित तुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत ताई से तीरते आ पौड़ी जिस विसरत तन पसम होए कहते सा प्रेत खिन घिर में बसन ना देवगी जिस सोई हेत कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्ज केत जैसा बीजे सो लुणे तरम यो खेत अकृत कणा हर विस्तरिया जोनी परमेत सलोक कोट दान स्नान अनक शोधन पवित्रत उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईदन की तो मूकणा ओरी दतीम पाहे मन वसंदरो सच सहो नानक हब्बे डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास होए सिमर तर नाओ मन चिंदे फल पाईए हर के गुण गाओ जन्म मरण पै कटिए निचल साथाओ पूर्व होवे लिखिया हर चरण समाओ कर कृपा प्रव राख लेहो नानक बल जाओ श्लोक गृह रचना अपारंग मन बिलास स्वादंग रस कंदाच ने स्मरंत नानक ते जंत दिष्टा क्रिम मुझ अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह तो साई जय विसर नानक सो तन खेहे पौड़ी सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे गृह सोय चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानद इशनाए विसूरे तो प्रचेतन आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए किर बिद मन तीरे तलोक चरण कमल बिरह खोजंत बैरागी दह दिस त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग में मन साई मुख उचरा वत्ता हब्बे लो नानक हब अडंबर कूड़िया तुण जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता तूटी चुंपड़ी तीर सब छिन्ना जातना पदना आदरो उद्यान पर मिन्ना मित्र ना इड़तन रूपहीन किज साक ना सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभोए सो प्रसन्ना तलोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसन रचंत मूढ़ अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हावरंग माणिया मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने से तीचित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस पोक जागत पगलाया आर जा गई वेहाय तंदे ताया पूर्ण पय ना काम मोया माया क्या वे चारा जंत जा आपुराया श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण कौतक कोड तमाशय चेतन आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मान्या चूड़ समगरी पेख सद कर जानिया।

ओक राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भत है संचंत दिखिया शलंग शिद्रंग नानक बिन घर संग न चालते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिस्तम सुना अड़ न लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया पौड़ी चलद्या नाल न चले तो क्यों संजीए जिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजीए और बिसरे क्यों त्रिवतावे नाम नरंजीए प्रभु छूटन लाग नरक समंजीए ओ कृपाल दयाल नानक पौ पंजीए तलोक नच रासुख मिष्टंग नच पुगरस मिष्टंग नच मिष्टंग सुख माया मिष्टंग सा संग हर नानक दह मिष्टंग प्रभ दर्शन लगड़ा सो ने हो मन मजाहू रत्या विदड़ो सा थोक नानक मिठा सो तनी पौड़ी हर बिन कछु न लाग गई भगतन को मीठा आन स्वासा फीकया कर निर्णौ डीठा अज्ञान परम दो कटया पुर पए बसीठा चरण कम मन बेदया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु फिर से सब झूठा तलोक तिगत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण विधंच पुरंक नादंग हर बंधन कुसुम बासन चरण कमल रचंत संत नानक आन नारुचते मुख डिखाऊ पलक छड आन डेऊ चित जीवन संगम ते तनी हर

आतो सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन अरहाओ जो मांगे सोई सोई पावे शिव हर के चरण रसायन जन्म मरण दुह ते छूटे भवजल जगत तरायन खोजत खोजत तत विचारियो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाह जे नानक सदा सिमर नारायण।

दय दिस रब रहा जस तुमर अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा इस गावे करते ते दिन कभो ना मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बसूर सुख संपत को इस जी के फिर हर नानक जाने कूर टोडी मोहल्ला पनवा माई मेरे मन की प्यास एक न रह न सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को तारी मन आस रखाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर्व मनोरथ कर कृपा फेटे गुण तास सांत सहज सुख मन उपजो कोड सूर नान परगास टोडी मोहल्ला पंजवा हर घर पद पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रखाओ सुंदर सुगण चित्र साबित दास निवास भक्त गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म को बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्माद आना बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जह जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी मोहल्ला पंजवा माई माया चल तरन की अग्न मेघ की छाया गोविंद भजन मिन हड़का जाल रखाओ छोड़ सियान बहु चतराई तो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मार्ग देखा यो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पाग ही समत नहीं खाल प्रेम भगतरा चे जन नानक हर सिमरन दैन पै मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे भग देवे परमेश्वर कूड़ फला दर्शन गुर डीठे रखाओ गुण गावत अच्युत अविनाशी काम क्रोध दिन से माटीठे अस्त्र पय सज रंग राते जन्म मरण बहोर नहीं पीठे बिन घर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक ना बिहून चले सामूठे टोडी मोहल्ला पंजवा साध संग हर घर नाम चिता रहा सहज आनंद होवे दिन राती अंकर पलो हमारा रहाओ और पूरा पेट्यो बड़पागी क्या को अंत न पारा वारा कर गए काल योजन अपना बिरसागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बौड़ न संकट द्वारा नानक शरण गई स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी मोहल्ला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोड़ आनंद राजो पुगवे हर सिमरत दिन से सब दुख रखाओ कोड़ जन्म के किल विख नासे सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पैयासा तरसन भेटत उतरी पुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न धोख टोडी महला पंजवा हर घर चनर दे उर थारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सबल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्थ तत् विचारे गुण दावत अतुल सो पाया ठाकुर अगम अपारे योजन पारब्रह्म अपने कीने चिंता भावर कशना विचारे नाम रतन तुन जब जब जीवा हर नानक कंठ मझारे टोडी मोहल्ला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो का अपनी अदमाई उर्जो कनक कामनी के रस न कीर्त प्रव गाई रहाओ जग झूठे को साज जान के तसे रुच उपजाई तीन बंद तिमर नहीं कबू खुद जो संग सगाई मगर रहो माया मैं निस दिन छुट्टी न मन की काई है नानक अब नाय अंत गत बिन घर की शरणाई टोडी बाणी भगता की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर चल की माशली चरे खजूर ताए रे बग बाद लायो जिन घर पायो तिने छपायो रहाओ पंडित होए के वेद बखाने मूर्ख नाम जो रामे जाने कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही पत पवित पहे राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकासी व्रत रहे काहे को तीर्थ जाई पंडित नाम देव सुकृत सुमत पहे गुरमत राम कहे को ना बैकुंठ गए तीन शंदे खेल अच्छे रहाओ
कुंभार के कर हांडी आचे, राजा के कर सांडी गो, बामन के कर रांडी आचे, रांडी सांडी हांडी गो, पानिये के कर हींग आचे, पैसर माते सींग गो, तेवल मध्य लीग आचे, लीग सीग हीग गो, तेली के कर तेल आचे, जंगल मध्य बेल गो, माली के कर केल आचे, केल बेल तेल गो, संता मध्य गोबिंद आचे, गोकल मध्य श्याम गो, नामे मध्य राम आचे, राम श्याम गोबिंद गो, अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष पावे अज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मान मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सदगुरु दान देवायो हरहाओ ते जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुना।

जन नानक कौहर भेटे स्वामी दुख होमे रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जुगज करे सो

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर भवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस्त कजनदर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। सो सहो सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लेवल।

सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोड़ जन्म के दुख गवायो अरहाओ जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो सर्व सुख हर नाम वडाई।

न पावे विण कर्मा किश पाइये नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती माया माए समाणी इन्नी बाती सो पाइये नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे किन्नी बाती सो पाइये जो किश करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइये। जा के प्रेम पदार्थ पाइये तौ चरणी चित लाइये सौ कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइये। एव कह सुहागणी पैणे किन्नी बाती सौ पाइये आप गवाइगे ता सौ पाइगे और कैसी चतराई। सौ नदर कर देख सोधन लिख कामण नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती अहे निस पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप चखण कई गे सास

मनहार अगम अगाध ऊच अपार जो तो सेवै तिन पौ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गावे जो दिसे सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप सेमर सेमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन जपया तिस कौ बलिहार तिस कै संग तरे संसार।

गुरु साबास है हर देश स्नेहा औ वेख वे गुरु विकसया गौर सतगुर देखा गोरसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जेन सुन सिखा गुरमनिया तिना तुक सब जावी हर का मार्ग आखिए कौ किदबद जाइए हर घर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आरा दया सेसा वरदाने हौ सतगुर कौ सदवारिया गुर भजन समाने तू ठाकुर तू साहिब तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी।

निर्दिन मैं प्राणी छिन छिन औध विहात है फूटे कर जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही सो पी संग न होया रहाओ माग पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना जियो छूट्यो जब देत डार अगन मैं दीना जीव तलो व्योहार है जाको तुम जानो नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कयो मान ले मेरो अरहाओ संपत रतन राश्यो आत्मो लगायो काल फास जब गल परी सब पयो परायो जान बूझ के बावरे ते काज बिगारियो पाप करत सुगत्यो नहीं न गर्भ निवारियो जे बिद गुर उपदेसया

तीर्थ मल मल नहाय, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए, अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हो गई, जे सण निसाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवई, सो दम बिरथा जाए, यो तन वेची बै करी, जे को लहे विकाए, नानक कम न आवई, जिद तन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला, कार सतवा, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जोग ना खिंता, जोग ना डंड, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है, गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, योगी कही है सोई रहाओ, जोग ना बाहर मड़ी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देद संतर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है, सदगुर भेटे ता सहसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है, निजर चरे सह तुन लागे, करगी परचा पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, नानक जीव त्या मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सिंगी वाजे, तौ निरभौ पल पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत तौ पाई।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सृट सब साजी कोई सेवा करो जे किश कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगध नीचाण जन नानक कौहर बख्स लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सांक

जाए। सर्ब निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोल आया तेरा। सूही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी। ईत यूत की ओर सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम। पूर्ण होवे मन के काम रहाओ, प्राप अवनासी रैण दिन गाओ। जीवत मर्त निचल पावे थाओ, सो साओ सेव जिद तोट न आवे। खात खर्चत सुख अनद विहावे, जग जीवन पुरख साध संग पाया। गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सूही महला पंजवा, गुर पूरे जा पए दयाल। दुख बिनसे

प्रेम शोहा करत कसाई, निर्दय जंत तिर दया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई, तर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूह

सेवक कौ पौ किश नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ, जो तेरे रंग राते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मेटे कोई, सदगुर का दिलासा, नाम त्यायन सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्ट लय सद है, ज्ञान त्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी, सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रख नगारे, जित तू लाभ है, तित हम लाग है, क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी तू प्रवे अंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी, अरहाव आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है, आप त्या हुई है सब रेणा, जीवत्या यो मरिय, सफल जन्म जिसका जग पीतर, साध संग नव जापे, सगल मनोरथ जिसके पूर्ण।

तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सादर वाला। राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

चित्त बेन गोर गुण ना सुमावनी बलराम जियो गुण सार न जानी परम फुलाणी जोबन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता फिर का सहज ना पाया सदगुर पूछ ना मार्ग चा।

ताओक नेरा सुन प्रा मेरा, मैं तेरा परवस। दर्शन देख पई ने केवल, जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया पाए सुभाए। नानक साजन कौ बल जाइए, साच मिले कर आए। कर आएड़े साजना तां तन करी सरसी राम, हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम। गुण संग रहंसी खरी सरसी, जा रवि रंग रत। अवगुण मार गुणी कर छाया, पूरे पुरख विधाते। तस्कर मारवसी पंचायण, अदल करे विचारे। नानक राम नाम निस्तार, गुरमत मिले प्यारे। वार पाएड़ा बालड़िए, आस्था मनसा पूरी राम। तेरे रावेड़ी शब्द रली, रब रहया न दूरी राम। प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई, तिसकी नार सबाई। आपे रसिया आपे रावे, ज्यो ते दी वड्याई। अमर अडोल अमोल अपारा, गुरपूरे सच पाई है। नानक आपे जोग संजोगी, नदर करे लिवलाई है। फिर उचड़िए मारड़िए, त्यो लोवा सिरता जा राम। हाँ बिसु पई देख गुणा, अनहद शब्द अगा जा राम। शब्द विचारी करनी सारी, राम नाम निशानों।

परम गद पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तननाठी पाखंड परम गवाया हौ में पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे वेण सतगुर मगना पाया उजड़ पंथ प्रमे गावारी खिन खिन तक्के खाया आपे दया करे प्रवदाता सदगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के विछड़े जन्म मेले नानक सहज सुपाए आया लगन गणाए हिरदे तन ओ माई।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगस अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया साथन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे घर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सारागी साज शब्द लिवलाई अनदिन सहज रहे रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रवेंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी काट काट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह सुमाईए तेस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहेन सुनाम त्याए इहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम अंतरे हो में ममता काम क्रोध चितराई राम अंतर चितराई थाए न पाई बिरता जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कुटम सुध पाई नानक माया मोह पसारा आगे साथ ना जाई हाँ पूछो अपना सतगुरु दाता किन वेद दुत्तर तरिये राम सतगुर पाए चलो जीवत्या एव मरिये राम जीवत्या मरिये पौजल तरिये गुरमुख नाम सुमावे पूरा पुरख पाया वड़ पागी सच नाम लेवलावे मत प्रगाश पई मन मानिया राम नाम वड़े आई नानक प्रपाया शब्द मिलाया।

की नाही, ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया। दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी, समलिया सच थान, मान महत सच पा।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड़ भागी पाई है।

हर गुण दे हर संतन के वसे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा थारी। सफल जन्म हो आपो भागा हर भेटिया एक मोर।

जपिए मिल सतगुरु सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो उन्नी इच्छ सुभाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे न आवे जाई राम अवनासी पाया नाम त्याया सगल मनोरथ पाए सांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया काट काट अवनासी थान थनंतर साई को नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी मन लाई सूही महला पंजवां कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी।

गुण गोपाल गाओ नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम, सबल जन्म होआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम, जप एक प्रभु अनेक रव्या, सर्व मंडल छाया, ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सा ब्रह्म दृष्टि आया, जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए, देख दर्शन नानक बिसे, आप लए मिलाए, सूही महल्ला पंजवां, आप चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए, तरते आप वसाया राम, तरते आप वसाया, सर्व सुख पाया, उत पाई सिख बेगासे, गुण गावे पूर्ण परमेसर, कार्य आया रस, प्रभ आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन इहो थान सुहाया, कर मंदर हटनाले सोहे, जिस च नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम आराध, कटिए जमकी फासी राम, काटी जम फासी प्रभ अवनासी, हर हर नाम तिहाए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए, संत सज्जन सुख माणे रलियां, दुख दर्द प्रम नासी, शब्द सुहारे सदगुर पूरे, नानक सदबल जासी, दात खसम की पूरी होई।

बिनवंत नानक इश पुन्नी एक दर्शन जीजे राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सदगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ सम्मल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान औगुण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले काड़-काड़ वासी सर्ब निवासी नेरे गीते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हौ बिसम पई जी हर दर्श

सच रते से निर्मले होमे तज विकार जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा सूविगे सूहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए ज्यो टेके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी सगत सिवे कर आई मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर अपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है संतन पाया जाए इस लेंदे बिलम न हो वई रंड बैठी दूजे पाए मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए। शब्द सच्चे रंग लाल कर पाए पाए सीगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई। मनमुख ठौर ना पाए नी फिर आवे जाई जोत भावे सोथी है सब चले रजाई। श्लोक महला तीजा सूहे वेश कामण कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख तरे प्यार ओस सील ना संजम सदा झूठ बोले मनमुख कर्मखवार जिस पूर्व होवे लिखया तिस सतगुर मिले पतार। सूहा वेश उतार तरे गल पैरे खिमा सीगार पीगे सौरे बो शोभा पाए तिस पूज करे साब सहसार। और लाई किसे दीना रले जिस रावे सिरजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अवनासी पुरख प्रतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी बिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का

पाई, अत्यंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते शोभा पाई, जगदीश से वो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर विख है, बौड़ ना मरे ना जम पिख है, करही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अन दिन गावे एको नाम,

बात होवै नहीं। अपना पला सब कोई बांछ, सो करे जे मेरे चितना चितैनी। मन की मत ते आगो हरजन, एहा पात कठैनी। आन दिन हर हर नाम ते आवो, गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यों पावे ते वे बोलैनी।

मुए अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुए निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण।

आप ही पुजारी, आप ही देवा, आपे जोग, आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन, आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही चरना, अरगाओ आप ही मष्ट, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना, पहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसु करत जन्म।

ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजे ज्यो बालू कर बार बिनसत बार ना लग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सद देख विचार सिद्ध साधक गिर ही जोगी ताज गए कार बार रहाओ। जैसा सुपना रैन का तैसा संसार दृढ़ मानसा बिनसी है क्या लगे ग्वार। कहां सो पाई मीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वडियाईया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जी उदाल होए तो भगती लागो लपट रहो मन बसना गुर मिल ए त्यागो।

संतन पगराल उगत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल प्राम पै राखो मोहते कट हो जमजाल बिनो करो करना पते।

रगाओ औगद हर का नाम है जित रोग ना व्यापे साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापे हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए सांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिसे फिटिया ताके सुख परवेश।

न आवई गुर सिख प्यारे रहाओ करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर नानक प्रसरणागति।

प्रमिट गया रविया नित राम। साध जना के संग बस्त तुग सहज विश्राम। साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रघाओ। पलट पए संसार में फिरते पए नाम। नांग ते शरणागति काट काट सब जान। बिलावल मोहल्ला पंजवा रोग मिटाया आव प्रभ। उपजया सुख सांत वड प्रताप अजज रूप। हर कीनी दात गुर गोविंद कृपा करी। राख्या मेरा भाई हम तिसकी शरणागति। जो सदा सहाई अरहाओ। बिरती कदे न होवई जन की अरदास। नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल मोहल्ला पंजवा मर मर जन्मे जिन बिसरिया। जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया। आन दिन रंग राता तांत सहज आनंद करा। पूर्ण पैयास सुख पाया हर साध संग। सिमरत गुणतास रहा तुण स्वामी अरदास जान। तुम्हें अंतर जामी फान तन अंतर रव रहे। नानक के स्वामी

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसेयन अपनी कल तारी मन बांझ तो फल दितेयन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन सरवनी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए अपहे दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघ अघ गुण राती।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए जो

कहो नानक ऊचो ऊचा बलावल महला पंजवा बिन हर कामना आवत हे जा सो राच माज तुम लागे मोह मोहनी मोहावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मह जावत हे उर जरे इंद्री रस प्रेरे हो बिखे ठगोरी कावत हे तिरण को मंदर साज सवार हो पावक तले जरावत हे ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मोड पर ठाडे केस गए फेरावत हे दिटन आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत हे जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी जूफा हावत हे कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत हे बिलावल महला पंजवा हार हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान तंबोली रखाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जो वड़ पागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मोली कहो नानक प्रेरवी सुहागन आतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साध दयारा तब ते दुरमत दूर पई रखाओ पूर्ण पूरे हो संपूर्ण तीतल सांत दयाल दई काम क्रोध न अहंकारा संते हुए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते यो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोज पई बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साके एक रोम आई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिए किश कथन ना जाई जय जय देखा तय रया समाई रखाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए तय मेरे प्रभ तू है सगाई शरण परे उहर चरण गए प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई बिलावल महला पंजवा आगम रूप अवनासी करता पातत पवित एक निमख जपाइए आचरज सुनियो प्रात भेट ले संत चरण चरण मन लाइये कित विधिये कित संजम पाइये कौ सुरजन के ज्योति त्याइये रखाओ जो मानुख मानुख की सेवा ओ तिस की लई लई फुन जाइये नानक सरन सरन सुख सागर मुए टेक तेरो एक नाइये बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद बंद आर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रखाओ सुख सहज आर कनो आनंदा गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हरस बरन सको गुर पूरे मेरी उल्ट तरी पेख्यो मून

पावै एकत सुनत सदा संघरे रखाओ। काज भ्याजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होमन तौरा अनहोमन मीठा दिखिया मैं लपटाए जरे। अंध कूप मैं परे हो प्राणी परम गुबार मुँह बंद परे। कहो नानक प्रभुत दयारा गुर पीटै काढ़े वहां भरे। बिलावल महला पंजवा मन तरसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे।

बनायो आप अपने सेवक की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

मूला लसो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को आकत कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की सा

दूत धुट सब होए खया, गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नानक उचरे हर की जया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, बिन पय भगती तरन कैसे, करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप भरोसे रखाओ, सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे, औद विहावत अधक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे, सरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संगत रमण जैसे, केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए रहाओ। तज अवमान अरचिंत बैरानी, साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम, तांते रोग खय। महामुख अजान अज्ञानी, रखे थार दए, कहो नानक गुरपुरा फिट्यो, आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा, मुयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्राप्रीतम, रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जनतारे, तिमरे अनक मुनि, अंधले टेक निरथन तन पायो। प्रभ नानक अनक गुणी, राग बिलावल महला पंजवां, कर तेरवां पड़ताल।

पुराण पुकारे परम करो खट कर्म दरड़ैया मन मुख पाखंड परम विगूते लोभ लहर नाभ पार बुड़ैया नाम जपो नामे गल पावो सिमरत शास्त्र नाम दरड़ैया होमे जाए तां निर्मल होवे गुरमुख परचे परम पद पैया इहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंत जाए वाजे जित फावे तित राहे चलैया। बिलावल मोहला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हौ बल बल सतगुर सतपुरखैया राम नाम मेरे प्राण मसाए सतगुर परस हर नाम समैया जन कीते हर नाम टकैया सतगुर की तर लागा जाव गुर कृपा ते हर दर लहिया रखाओ यो शरीर कर्म की धरती गुरमुख मस मत तत कढ़ैया लाल जवे हर नाम परगासिया पांडे पाओ पवे तित अय्या दासन दास दास होई रहिए योजन राम भगत निज पैया मन बुद्ध अर्प थरो गुर आगे गुर प्रसादी मैं आकाश कसैया मन मुख माया मोहे आपे यो मंत्र सना जल तित खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया यो मन नाचे सदगुर आगे अनगल शब्द तुन तूर बजैया हर उस्त करे दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर की रंग रता मन गावे रस रसाल रस शब्द रवैया निज करतार चुए अत निर्मल जिन पिया तिन्ही सुख लैया मन हर कर्म करे अभमानी जो बालक बालू कर उसरैया आवे लहर सुमंद सागर की खिन मैं पिन पिन टह पैया हर सर सागर हर है आपे यो जग है सब खेल खेलैया ज्यो जल तरंग जल जले समावे नानक आपे आप रमैया। बिलावल मोहला चौथा सतगुर परचे मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन पसम दरड़ैया अमर पिंड पै साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रहैया कृपा करो मसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रखाओ तदे ग्रस्त पया बनवासी एक मनुआ टिके ना टकैया धावत ताए तदे कर आवे हर घर साधु शरण पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करे नहीं बूझे गुर कै शब्द नराज सुख लैया उबजी तर्क दिगंबर हुआ मन दह दिस चल चल गमन करैया पर पवन करे बूझे नहीं तृष्णा मिल संग साथ दया कर लैया आसन सिद्ध सिखे बहु तेरे मन मांगे रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख मन सांतन आवे मिर साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया पंडज जेरज सेत उत्खुज वर्ण रूप जीजन तो पैया साधु शरण परे सो उबरे खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय दियो कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमियार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन तना जट सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई

नाम ते आए। दीनानाथ दयाल मेरे स्वामी, दीनानाथ दयाल जाचो संतरवाल रखाओ। संसार विखिया कूप ताम अज्ञान मोहत कूप, गय पूजा प्रभ जी ले हो। हर नाम अपना देहो, प्रभ तुझ बिना नहीं चाहो। नानका बल बल जाओ, लोभ मोह बादी देह, बिन भजन होवत खेहे। जमदूत महापयान, चित गुप्त कर्म है जान। देन रैन साख सुनाए, नानका हर शरणाए। पय पंजना मुरार, कर दया पतत उधार। मेरे दोख गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे। गय ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ। हर गुण दे गोपाल, सर्व कड़ प्रतपाल। मन प्रीत दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस। एक निमख रहन ना जाए, वडभाग नानक पाए। प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। जो मीन जल सुवेत, आल कमल पिन ना पेत। जो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास। जो तरन परत परान, जो लोभिये तन दान। जो दूध जले संजोग, जो मां खुदिया रस भोग। जो माद पूते हेत, हर सिमर नानक नेत। जो दीप पतन पतंग, जो चोर हिरत निसंग। मै गले कामे बंद, जो ग्रस्त बखई तंद। जो जुआर बिसन ना जाए, हर नानक इहो मन लाए। कुरंक ना देने हो, चातरक चाहत में हो। जन जीवना सत्संग, गोविंद भजना रंग। रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान। गुण गाए सुन लिख दे, तो सर्व फल हर ले। उल समूह करत उधार, संसार उतर सपार। हर चरण भोजित ताहे, मिल साध संग जस गाहे। हर पैज रखे मुरार, हर नानक शरण।

तृतीय ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देवो पाए वेसा ज्योति जाति गणतन आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहा भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ उपाय चारे बेदा खानी चारे बाणी फेदा अष्ट दिशा खड़ तीन उपाय

अगोचर पुरख निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस्त्याख सब तृप्ता से एक रंगराते एक मरतूर एक दार कर साचे देख दूर झूठे को नाही पदनाओ कब न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी पर में मुक्त न होए तौ छूटे जा खदम छिड़ाए गुरमत मेले पग दरड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रसाजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रप हावे ता महल बुलावे सब दे फेदे तौ पद पावे तार कर वेस खपे लै जावे साचे साचे साच समावे सप्तमी संतोख शरीर सास मुंद परे निर्मल नीर मजन शील सजर दे विचार गुर के शब्द पावे सा पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अठ सिद्ध बुद्ध साधे सच ने केवल कर्म आराधे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमय मनुआ रहा लिव लाए परुणत नानक काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा कड़ कड़ नाथ महाबलवंडा आई।

मैं अंधले टोनी, वो जो है वो प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी महाविचित्र चंचल अनक पाग दिखावे, होए टीठ मीठी मन लागे, नाम लैण न ना आवे। गृह बने तीर वर्त पूजा, बाड़ काटे जोनी, नानक पंपे दया तारो, मैं नाम अंधले टोनी, मुहे अनाथ प्रेनाथ, ज्यो जानो त्यों रखो, चितराई मुहे नाहे, रिझावो कै मुखो, न चतर सुगर सुजान बेती, मोहे निर्गुण गुण नहीं, न रूप तूप ना, नैण बंके जय पावे तय रख तुई, जय जय जयंप सगल जाको, करना पत गत के ने लखो, नानक पयंप सेव सेवक, ज्यो जानो त्यों मोहे रखो।

लाड ले लाड लड़ाए सब में मिरहमारी होए गते पीत चितवो मिट अंधारे जो आस चकवी दिन चरे नांग पैम पै प्रसंग मेली मछली नीर ना विसरे तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा तुही बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अंध मंगल रस खणा नावल नवतन नाह उबाला कम रसना गुण फना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुखर नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा बिलावल मोहल्ला पंजवा शांत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्व सुखानंद पियो सुख सागर प्रापेटे नानक सुखी हो त्यो जियो शांत सुख सागर प्रापाई है जब हो वे भागो राम मानन मान वजाई है आरे चरणी लागो राम तोड़ श्याम चातरी दुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पो शरणाई राम राय फिर होए सुहागो राम तो प्रभ तज कद लागी है जिस बिन मर जाई गई राम लाज न आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाई गई राम पतत पावन प्रभ त्याग करे तो कत ठहराई गई राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाई गई राम श्री गोपाल ना उच्चर है बल गई है दो चार नरसना राम प्रभ भगत वशल ने सेव ही ताया काक ग्रसना राम प्रमो ही दुख ना जान ही पुड़ जो नहीं बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसना राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा होमे बिख त्यागन राम ईत ऊत न डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जे प्रपाया अपना अटल सुहागन राम बिलावल महला पंजवा हर खो जोवड़ पागियो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सदगाविये पार ब्रह्म के रंगे राम तो प्रसद ही सेविये पाई के फल मंगे राम नान प्रसरणागति जब अंत तरंगे राम एक तल प्रभु ना विसर जिन सब कुछ दीना राम वड़ पागी मेलावड़ा गुरु पिर चीना राम बहा पगड़ तमते काढ़ कर अपना लीना राम नाम जबत नानक जीवे।

गोविंद के सब इश पुजामी राम नानक उधरे जप हरे सहू का स्वामी राम रखे नेड़े अपने राम संगे ते लोइन नीके राम प्रापेहत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया दिखिया रस पीके राम नानक जल जले समाया।

मन मुख ध्यान न लागे, दुख च कार कमावनी, दुख वरते दुख आगे, करमी सतगुर फेटिए ता सच नाम लिव लागे, नानक सहजे सुख होए, अंदरों प्रम पो भागे महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाओ मन पाया, गुरमुख वेखन बोलना नाम जपत सदा सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्रगासिया, तेमर अग्ञान अंधेर चुकाया महला तीजा। मनमुख मैले मरे गवार, गुरमुख निर्मल हर राख्या उरतार, पंत नानक सुनो जन पाई, सदगुर सेवे होमे मल जाई, अंदर

नीरे राजा प्रजा सम कर मार ऐसो काल बड़ा नीरे हर के सेवक जो हर पाए इनकी कथा निरारी रे आवे ना जाए ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया एह तजो जी जानी रे कैद कबीर सुहो रे संतो मिल गए साग पानी रे बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सयानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहाओ आप ना बौरा राम क्यों बौरा सदगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत खोई मेरे परम फूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक कह जाने अभे ना माता तो कहो ना माता कहे कबीर रामे रंग राता बिलावल ग्रेव तज बानखण जाइए क्यों खाइए कंदा अजो विकार ना छोड़ई पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो भजल निध पारी राख राख मेरे बीठला।

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

लूट लेहे सागत पद खोवे साध जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण कसना सिमरत पाप बलायण अरहाउ नारायण समय निवास नारायण कड़कड़ परगास नारायण कहते नरक न जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन महे आधार नारायण भोयत संसार नारायण कहत जम पाग पलायण नारायण दंत पाने डायण नारायण।

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मखला पंजवा जा को राखे राखन हार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जो है काम क्रोध लो मोह ना पोह सा संग जप पे निरंकार निंदक कह मोह लागे शार राम कवच दास का सुनाहो दो दुष्ट तुस पोह तनाहे जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरण आए जो जो शरण पया हर राय

कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे ध्याना अभी कभी किशु न जाना तेरा एको ना पछाना ना जाना हरे मेरी कमन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्र तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रखाओ कभू जीड़ा उब चढ़त है कभू जाए पयाले लोभी जीड़ा तिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लखाए मंड

गर्भ परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा पाड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे टूका तृप्त न पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा।

अंत की बार ऊठ सिधारे ना बिनासव चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ते सा माया मूठ परानी रहाओ तीर्थ नाए न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहरोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए रखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्र तुम रे हाथ जित लावे तित लागे स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम कली महला पंजवा जो कुछ करे तोई सुख जाना मन असमझ सा संगपति आना डोलन ते चूका ठहराया सत महले सत समाया दू गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जय राखे सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है सर्व आनंद जब दर्शन पाईए राम गुणा नित नित घर गाएगे आपे।

रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय वस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीर्ज मद पूरा तेज समाध तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उतरे।

दया धारी गोविंद गुसाई हर घर नानक टेक टकाई राम करी महला पंजवा संत के संग राम रंकेल आगे जमस्य होए ना मेल अंगबुद का पया विनाश दुर्मत

माया मोया टेढ हो जात अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी कूड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सदगी चू है मान मुख कभे न उस्त करे निरपो निरंकार दातार तिसु प्रीत न करे गवार सब सहा सिर साचा साहो वे मोहताज पूरा पाप साहो मोह मगन लपट्यो परम गिरह

सागर तरयो बाशर खोज, खेद न पायो नए पुनरोज। सिंध समायो कट के माघे, करण हार कहो किस अज जनाघे। जो छूटो तो जाए पयाल, जो कढ़ो तो नजर निहाल। पाप पुन हमरे वसनाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली मोहल्ला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे। माया मोहे ब्यापिया तोहे, उदम करे गाडर ज्यो शेल। अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना। राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साज तना रहाओ। ऊने काज न होत पूरे, काम क्रोध मद सदगी चूरे। करे विकार जीरे के ताई, गाफल संगनत हुआ जाई। तरत तो अनक शल जाने, कौडी कौडी को खाग सिर छाने। जिन दिया तसे न चेते मूल, मिथ्या लोभ न उतरे सूल। पार ब्रह्म जब पए दयाल, जो मन हुआ सादरवाल। हस्त कमल लड़ली नू लाए, नानक साचे सा समाए। राम कली मोहल्ला पंजवा, राजा राम की शरणाए। निरपो पए गोविंद गुण गाव, साध संग दुख जाए रघाव। जाके राम बसे मन माही, तुझन दुत्तर पेखत नाही। सगले काश वारे अपने, हर हर नाम रसनित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे, तो दास अंदेशा काहे करे। जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान। गुर परमेश्वर पेट निहाल, तो दर्शन पाए जिस होए दयाल। पार ब्रह्म जिक्र पा करे, सा संग सो पव जलता रहे। अमृत पीवो साध प्यारे, मुख उजल साते दरबारे। अंध करो ताज सगल विकार, नानक हर जप उतरो पार। राम कली मोहल्ला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागे। माटी को जल दह दिस जागे, ऊपर चरण तले आकाश। कड़मे सिंध की ओ परगास, ऐसा समर्थ हर जीव आप। निमकन बिसरे जी भगतन कह, आठ पैर मनता को जाप रहाओ। प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनू साबन सूद। पय ते निरपो डरता फिरे, हुंदी कहो अणहुंदी हिरे। देही गुप्त बदेही दीसे, सगले साज कर जगदीसे। ठगन हार अन ठगदा ठगे, बिन वखर फेर फिर उठ लागे। संसभा बिन करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक ताकी परम गद होए। राम कली मोहल्ला पंजवा, जो तुझ पावे सो थिया। सदा सदा हर की शरणाई, प्रभ नाही आन बिया। रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दिसे, इन में किशु न संग लिया। दिखे ठकौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगूता, गर्भ जो मैं कृत पया। पूर्व कमाने छोड़े नाही, जम दूत ग्रास्यो महा भया। बोले झूठ कमावे अवरा, तिस न बूझे बहुत हया। असाध रोग उपजिया संदूखन, दे बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्ही साजे, आपे कीने संत जया। नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली मोहल्ला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई। जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ। दर्शन पेखत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सवारे सगले तन के। जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। पतत उदाहरण कृपा निधान, सदा सदा जयगे कुर्बान। निर्मल मत दे जिस दान, तजे विकार बिन से अपमान। एक तिहाई के साध के संग, पा बनासे नाम कै रंग। गुर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रब रया गुणतास। दर्श दे तारो प्रव्यास, नित नानक चितव सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा, कर दूजा।

सरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिनसे सब दुख, सहज आनंद करो मेरे पाई, गुर पूरे सब चिंत मिटाई, आठ पैर प्रभु का जप जाप, नानक राखा होआ आप। राग राम कली महला पंजवां, पड़ताल कर तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद नर नरहै नमस्कार।

रोग सोग परमीजा ताहू पवन तार जात बिघाए संत बिघावे कीर्तन गाए ताऊ बिघावे दिन रैन चाल ताऊ बिघावे सो पिड़माल ताऊ बिघावे बाल पढ़ावत संत बिघावे हर जगावत ताऊ बिघावे नट नाटक निरते ताऊ बिघावे जिया ए हिरते ताऊ बिघावे राज मैंडरते संत बिघावे हर्ज करते ताऊ बिहावे मता मसूरत ताऊ बिहावे सेवा जरूरत ताऊ बिहावे सोधत जीवत संत बिहावे हरस पीवत जित को लाया तित ही लगाना ना को मूड़ नहीं को स्याना कर कृपा जित दे वे नाओ नांग ताके बल बल जाओ राम कली महला पंजवा दावा अग्न रहे हर बूट माद गर्भ संकट ते छूट जाका नाम सिमरत पो जाए तैसे संत जना राखे घर राय ऐसे राखन घर दयाल जत का देखो तुम प्रतपाल रखाओ जल पीजो तिखा मिटंत तन बिसे ग्रे आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर घर नाम प्यार किसानी जो राखे रखवाला मात पिता दया जो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखे कंठ लाए जो अंधले पेगत होए आनंद गूंगा भगत गावे बहुचंद पिंगल पर्वत परते पार हर के नाम सगल उदार जो पावक संग सीत को नास ऐसे प्राशित संत संग बिनास जो साबन पापर उजल होत नाम जबत ता प्रम पखोत जो चक्री सूरज की आस जो चात्रक बूंद की प्यास जो कुरंक नाद कर्ण समाने त्यो हर नाम हर जनमने सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दयाल पहेता आए चीत दया तारी तन तारण हार बंधन ते होई छुटकार तब थान देखे नैन अलोय जिबन दूजा अवर न कोय प्रम पे छूटे गुर प्रसाद नानक पेख्यो सब बिस्मात राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिये प्रसगल तुम्हारी तारना यो मन हर के नाम अधार ना रहाओ खेन में ताप उतापे कुदरत तब करते के कारना ताम क्रोध लोभ चूड़ निंदा साधु संग बिदारना नाम जत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना भगत शरण जो आवे प्राणी तिस ईहा उहा ना हारना सुख दूस मन की बिरदा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का अपन की आप पालना अनकबार और जन ऊपर नानक वंजे वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दर्शन पेड़त पाप सब नस हरस्यों दे मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते हुए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुख लाई पद पुनीत किए खिन पीतर अज्ञान अंधेर वंजाई कारण कारण समरथ स्वामी नांग तिसरनाई बंधन तोड़ चरण कम दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंध कू बिखिया ते काढ़ियो साच शब्द बने आई जन्म मरण का सिरसा चूका बहौड़ कथो ना ताई नाम रसायन इव मनाराता अमृत पी त्रिवताई संत संग मिल कीर्तन गाया नित लव से आ जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना पाई नाम रधान पाया वडभागी नानक नरक न जाई काल सियाण पुगतना मेरी पूरे गुरु कमाई जत स संजम सुच गए सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र मां बिखिया मैं गुर साते लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिगे लड़लाई साज तर्म का बेड़ा बंधया अवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूर्त अजोनी संभो कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अगाई एकंकार निरंजन निरपो सब जलत रहा सुमाई भगत दान भगता को दीना हर नानक जाते माई राम कली महला पंजवा श्लोक सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तारा ताराम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो सदगुर खेत निवाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली त्रिसन ओलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया
ਹਰ ਕੀਮਤ ਪੈਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸੰਤੋ, ਚਰਨ ਕਮਸਿਓ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨਾ, ਸਾਚੇ ਦਰਸ ਸਮਾਈ ਸੰਤੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਪਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ ਸੰਤੋ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਕਤ ਆਵੇ ਕਤ ਜਾਈ ਸੰਤੋ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਤੋ, ਆ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ, ਪੂਰਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਸੰਤੋ, ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸੁਤ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸੰਤੋ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੀ, ਭੂਮਣ ਕੇਰ ਮਹਤ ਬਿਗੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਰਗਾਓ ਅੰਤਰ ਸੂਖਾ ਬਾਹਰ ਸੂਖਾ, ਹਰ ਜਾ ਮਲਨ ਪਏ ਸੁਟਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤਨੇ ਨਿਵਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਉਧਰੇ ਸੰਤ ਪਰੇ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਪਰ ਬਿਰਸੇ ਮਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਣਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਰਵਿਆ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰੀ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰਿਆਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਰਵ ਦੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ।

करता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे सदा सिरत सलाह तेरी, नाम मन मसावे नाम जिनके मन मसया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आवसया, जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिदिया ए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुपागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो, से नाम हर के लागे कहे नानक तहे सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे साची लवे बिन दे निमाणी लवे बाजहो, क्या करे वेचारिया तुद बा समर्थ कोए नाही, कृपा कर बनवारिया केस नौ होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारी।

काटन पय हरण तुसा गर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याय शांत जस गावोड़ पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महामूर्त कड़ी गुण उचरित सोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया ओ नदान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण।

तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझे सूझे पड़ पड़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा तदे धर्म तरे धर्मापुर गुणकारी मन धीरा तदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोर बोसज पूरा करते की मित करता जाने कहे जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिग खाया गुर रस गीत बादनी पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुरस कहे अमृत लया मन तन सा सुखाया आपे गुरमुख आपे देव आपे अमृत पी आया एक को एक कहे सब कोई होमे गर्भ वे आपे अंतर बार एक पछाणे क्यों कर मैल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो एक को सृष्ट सबाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक सुमाई इस करते को क्यों गए राखो अफरे तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठ गौरी पाई लाभ लोभ मोहताज विगूते इवता फिर पछताई एक सरेवे ता गत मित पावे आमन जान रखाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एक को पावर पवे त्यो लोए एक को बूझे सूझे पत होए ज्ञान जान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लय जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तूर्म ज्योत उजाला तीन पण में गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसे निजर तारा उत्तम तब सवारण हारा इस एक का जाने पेओ आपे करता आपे देओ उगवे सूर असर संघारे ऊचो देख शब्द बिचारे ऊपर आद अंत लोए आपे करे कथे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मान मुख सोए प्राप जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पद होए अराजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ मार रात दिन अंत रहे रंग राता तीन पौन जो चारे जाता जिन जाता सो तिस ही जेहा आत निर्मायल शीश देहा रे सी राम हृदय एक पाए अंतर शब्द साथ लिवलाए रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहते रहे न कोई इस पे करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेवे पत मती लाज मरंती मर गई भूगुट खोल चली साध दीवानी बाबरी सिरते संक टली प्रेम बुलाई रलीसियो मन में शब्द आनंद लारती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लहा नाम रतन जब सार लब लोभ बुरा अंकार लाड़ी चाड़ी लाए तवार मानव अंधा मुग्ध गवार लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग लहा नाम पूंजी वे साहो नानक सची पात सच्चा पात साहो आए विभूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ आद सहल नीच कर होए आद देख निवे जिह दोए आद होए तामुक्त से आना भगत बिहुना जग बोराना सब में वरते एक को सोए जिसनु कृपा करे तिस प्रकट होए जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन्म मरण नहीं तंदा तैर जो दिसे सो आपे आप उपाय आपे कर थाप आप अगोचर तंदे लोई जुग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई नाम विहुना मुक्त के होई।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मद कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलिया, एक देव रात मुरारी, महला पंजवा, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया,

मन तन हिरदे सिमर हर आड़ पैर गुण गाओ उपदेश सुनो तुम गुर सिख हो सच्चा ए सुआओ जन पदार्थ सबर होए मन में लायो पाओ सूग सहज आनंद कणा प्रभ जपत्या दुख जाए नानक नाम जपत सुख उपजे।

तिस दर्द निवारणो, जितो उठा चित तिस कदे न हारणो, जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारणो, जिसनु लाए सच तिस सच संभालणो, जिस आया हथ निदान तो रहा पालणो, जिसनु इको रंग भगत सो जानणो, ओ सबना की रेण बिरही चारणो, सब तेरे चोज विड़ान सब तेरा कारणो। श्लोक महला पंजवा। उस पे निंदा नानक जी, मैं हब मजाई छोड़िया हब किस त्यागी।

फिर फिराहर सतगुर संग दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवा आहार सब करदा फिरे आहार एक ना होए नानक जित आहार जग उधर।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार जाए बैकुंठ नहीं संसार। निरपो के कर बजावे तूर अनगत बजे सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रखाओ। जे सिमरन नाही ननकार मुक्त करे उतरे।

पीले गगन मझारंग बेदियले चक्कर पुहंगा पेटियले राय निसंगा टूकियले मोह मयास सद कीनो सूर गेरास जाब कुंभक परपुर लीना ते बाजे अनखद बीना भगते बाक शब्द सुनाया सुनते सुर मन बसाया कर करता उत सपारंग कहे कबीरा सारंग चंद सूरज दो ज्योत स्वरूप ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार।

राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रघाओ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीए